इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: पारी। यह दोहा अहंकार और परमात्मा के बीच के उस बुनियादी अंतर विरोध को सामने रखता है जहां दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहां गैंद का अर्थ है मतवाला हाथी और खंबा वह खूंटा है जिससे हाथी को बांधा जाता है। इस अद्भुत रूपक के माध्यम से कबीर साहब मान अर्थात अहंकार और पीयू अर्थात परम प्रिय या परमात्मा के बीच चलने वाले भीतरी द्वंद्व को समझा रहे हैं। श्रोताओं, कबीर साहब एक बहुत व्यावहारिक सवाल पूछते हैं, खंबा एक गैंद है दोई। खंबा यहाँ एक है लेकिन गैंद यानी मतवाली हाथी दो है, क्यों करी करी बंद सी बारी? भला इस छोटी सी जगह में इस एक खूंटे से इन दोनों को एक साथ कैसे बांधा जा सकता है? यह असंभव है। अगली पंक्ति में कबीर इस रूपक का आध्यात्मिक रहस्य खोलते हैं। मानी करे तो पीऊ नहीं, यहाँ दो हाथी कौन हैं? एक है मान यानी हमारा अहंकार, हमारी अकड़, और दूसरा है पीऊ यानी हमारा प्रियतम, हमारा परमात्मा। कबीर कहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर मान सक्रिय हैं, अगर अहंकार का हाथी खड़ा है, तो वहाँ पीयू यानी परमात्मा का अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। पीयू तो मानी है, और अगर उस परमात्मा को पाना है तो उस भीतरी प्रेम को जगाना है जो तुम्हें अपने इस अहंकार के हाथी को निवारना होगा यानी उसे बाहर निकालना होगा। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यहाँ यह दोहा अद्वैत दर्शन और सूफी प्रेम मार्ग की साझी पराकाष्ठा है। जहाँ मैं होता है वहाँ परमात्मा ओझल हो जाता है, और जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वहाँ मैं का अस्तित्व मिट जाता है। कबीरदास जी की यह एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने पद प्रतिष्ठा ज्ञान और धन के अहंकार को बचाए रखकर भी ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे अहंकार के साथ सहजा जा सके। वह तो एक विसर्जन है। जब तक चेतना से इस झूठे मैं का विसर्जन नहीं होता तब तक उस अखंड पीयू का मिलन संभव नहीं है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हमारे मन के खूंटे पर कौन सा हाथी बंधा हुआ है। क्या हम 24 घंटे अपने ही मान, अपने ही अकड़ और अपने ही सही होने की जिद को पाल रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर भीतरी शांति और परमात्मा की शिकायत करना व्यर्थ है। आज कोशिश कीजिए इस मान यानी अहंकार के हाथी की पकड़ को ढीला करने की। विनम्र बनिए, झुकना सीखिए और अपने भीतर के इस संकीर्ण मैं को विलीन होने दीजिए। जैसे ही अहंकार का यह मतवाला हाथी हटेगा, आपके भीतर उस पीयू का, उस अनंत प्रेम और आनंद का शंखनाद अपने आप गूंज उठेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अरे वो अति तेज व्यव मंत्र संगे पूजी रहना तू, कितला देव धर्म अन गंधच आखो, समय डेल शेत्या भेव तू, अंतकरण मा गैरा खोल मजार, मन्ना पारा ठिशिनी, भेव मराले नको असं तुलेच वाटस, भेव खतम व्हाले नको असं तुलेच वाटस। अरे भेव म्हणजे तुना जीव, भेव म्हणजे तुनी ताखात, भेव म्हणजे तुना आत्मा, आणि भेव म्हणजे तुनं बठ्ठ काही असं तुले वाटस। म्हणशीन तू भेवले आ मयस को मयस, तू भेवना लाड करस, तू भेवना मक्कुलेस, आणि भेवले डोखावरेली शनी नाचस मोक्या चोक्या। अरे तुले आते लाज सरंबी वाटस नाही भेवनी, बेव म्हणजे तू ना पाचिलेच पुंजलशे, या बेवना पायरे तू गुलाम विदायलशे, या बेवना पायरेच तुनी हुशारी निरा नाम खतम विगी, या बेवना पायरेच तुना हुशारी मातून शानपण जलमलेत नाही, या बेवना पायरेच तुना इचार खतम विदायलशेत, तरी बी तू म्हणरा ना बेव म्हणजे तुला जित्तापण ना सारा, बेव नाही राहावं ते तू वशी बिन सारा, अरे भेव तू असं समाई ठेवशे ना जसा त्यातून वाढवडीलच येतस, अनमोर येणारा टाईम मातला वारसदार बी, अरे वाढवडलंस न्या तठायल परथा, तू पोसाडी राहणा बेवना दाखाले आणि माती राहणा तुना जिंदगी मा भरमना तमासा, माणसे माणसेस मातील गंध्या परथा संगत तू पलघडी जताडत जताडस आपला वारसदारसले, आई भ्यमकाडानी परथा त्यासना गयामा टाकी, समाई ठेवा भेव जीव मा जीव रावस्तोर असं वचन देस त्यासना कडतून, तुन्या या तठायल भेव परथास माई अजून बी मोकी जाईनी गरे गरेस मातली बाई, अरे बनाई ठेवतील तू माणूसना पायनी दाशी पल्लू गुंगटा बुरखा या मा कैत करी शिनी कैत करी ठेवतील गरमान, आणि जनावरेस ना माईक लांब हाडत घ्या पैदास करतच घ्या तिनावर बैजबरी आंगणी आणि मन्नी बी, भाव भाव नसना वत राहिना पाला पाचोया बेवपरताना, त्या भेवना फैलाव बाईपन्ना नाव मा मचाडी शीन तू उद्धरना नवरा म्हणजे देव, आणि करी टाक बायकोले गुलाम, तिले दिमाग अशी संधी तिले इचार करानी अवखात अशी संधी, तू झुलूम करीत गया तिवर त्यास वक्ते बाई माणूसना फरक वरे ठप्पा मारत गया, तू येडा बनत गया बठ्ठा गोष्टीस मा तुन्या भ्याकड भरमेसले खरं मानत गया, आणि खरानी अख्ख्या बेचूट सुकना गुंता भरमना मायक बनाडी म्हणशी खराना शोध लेवा गुंता, गंजज माणसेसना टोय भरमना मागे पयत घ्यात खरा कोटाना गुतागुतमा, अरे भो चांगला चांगला विचार थई चांगला रस्ताले जावानं चांगला वांगलानं ज्ञान तुले समजलं नाही, अरे म्हणशीन फरकेसनी जमा पुंजी वाढतच गी ना येडान मायक, आणि जथा बन तथा आई महामारीना रोग पसरत घ्या हलका भारी माणसेसमा हाऊ बामन हाऊ क्षत्री हाऊ वाण्या हाऊ खाल्ली जात ना तो बाटेल, अरे असा फरक जो जो तू चालत घ्या आणि फरकेसना रोग पसरत घ्या, हाऊ बोर्रा हाऊ काया हाऊ लांबा हाऊ खुनबट्या हाऊ नकटा हाऊ चपटा हाऊ या परदेसना हाऊ त्या परदेसना हाऊ या धर्मना हाऊ त्या धर्मना हाऊ या पंथना हाऊ त्या कुईना, बाई माणूस कितला फरक कितला फरक, अरे फरक फरक फरक धाकला मोठा ना फरक फरक मजार फरक, त्या माही बी बारीक सुरीक फरक फरकच बोकाय ना आणि त्यांना संसार, अरे भो तूच करत राह।
2: गीताई अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन म्हणाला करुणी करुणा माझी बोलिलास रहस्य जे त्या थोर आत्मविद्येने माझा हा मोह फेडिला, उत्पत्ती नाश भूतांचे ऐकिले मी सविस्तर कळला तुझ पासूनी अभंग महिमा तुझा, तुझे ते ईश्वरी रूप मानितो सांगसी जसे तेची मी इच्छितो पाहू प्रत्यक्ष पुरुषोत्तमा, तू जरी माणिसी शक्य मजते रूप पाहणे तरी योगेश्वरा देवा दाखवी तेची शाश्वत। श्री भगवान म्हणाले पहा दिव्यतशी माझी रूपे शतसहस्त्र तू नाना प्रकार आकार वर्ण जात विचित्रची, वसुवायू पहा रुद्र तसे आदित्य अश्विनी पहा अनेक आश्चर्ये कधी कोणी न पाहिली, इथे आज पहा सारे विश्व तू सचराचर माझ्या देहांत एकत्र इच्छा दर्शन हे तुझ परी तू चर्म चक्षुने पाहून शकसी मज घे दिव्य दृष्टी ही माझा ईश्वरी योग तू पहा। संजय म्हणाला महायोगेश्वरी कृष्णे राया बोलू निया परी दाविले तेथ पार्थास थोरले रूप ईश्वरी बहु डोळे मुखे जात दर्शने बहु अद्भुत बहु दिव्य अलंकार सज्ज दिव्यायुधे बहु दिव्य वस्त्रे फुले गंध लेवुनी सर्वतोपरी आश्चर्ये भरला देव विश्वव्यापी अनंततो प्रभा सहस्र सूर्यांची नभी एक वटे जरी तरी त्या थोर देवाच्या प्रभेशी न तुळे चिती सारे जगात ले भेद तेव्हा काल वले जसे देहांत देव देवाच्या देखिले तेथ अर्जुने मग विस्मित तो झाला अंगी रोमांच दाटले प्रभूस हात जोडूनी बोलिला नतमस्तक। अर्जुन म्हणाला देखे प्रभो देव तुझ्या शरीरी कोंदाटले सर्वची भूत संघ पद्मासनी।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: पुकारें। यह दोहा अहंकार और परमात्मा के बीच के उस बुनियादी अंतर विरोध को सामने रखता है जहां दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहां गैंद का अर्थ है मतवाला हाथी और खंबा वह खूंटा है जिसे हाथी को बांधा जाता है। इस अद्भुत रूपक के माध्यम से कबीर साहब मान अर्थात अहंकार और पीयु अर्थात परम प्रिय या परमात्मा के बीच चलने वाले भीतरी द्वंद्व को समझा रहे हैं। श्रोताओं, कबीर साहब एक बहुत व्यावहारिक सवाल पूछते हैं, खंबा एक गैंद है दोई। खंबा यहाँ एक है लेकिन गैंद यानी मतवाली हाथी दो हैं, क्यों करी करी बंद सी बारी? भला इस छोटी सी जगह में इस एक खूंटे से इन दोनों को एक साथ कैसे बांधा जा सकता है? यह असंभव है। अगली पंक्ति में कबीर इस रूपक का आध्यात्मिक रहस्य खोलते हैं। मानी करे तो पीयू नहीं, यहाँ दो हाथी कौन हैं? एक है मान यानी हमारा अहंकार, हमारी अकड़, और दूसरा है पीयू यानी हमारा प्रियतम, हमारा परमात्मा। कबीर कहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर मान सक्रिय हैं, अगर अहंकार का हाथी खड़ा है, तो वहाँ पीयू यानी परमात्मा का अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। पीयू तो मानी है, और अगर उस परमात्मा को पाना है तो उस भीतरी प्रेम को जगाना है जो तुम्हें अपने इस अहंकार के हाथी को निवारना होगा, यानी उसे बाहर निकालना होगा। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यहाँ यह दोहा अद्वैत दर्शन और सूफी प्रेम मार्ग की साझी पराकाष्ठा है। जहाँ मैं होता है वहाँ परमात्मा ओझल हो जाता है, और जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वहाँ मैं का अस्तित्व मिट जाता है। कबीरदास जी की यह एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने पद प्रतिष्ठा ज्ञान और धन के अहंकार को बचाए रखकर भी ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे अहंकार के साथ सहजा जा सके। वह तो एक विसर्जन है। जब तक चेतना से इस झूठे मैं का विसर्जन नहीं होता तब तक उस अखंड पीयू का मिलन संभव नहीं है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हमारे मन के खूंटे पर कौन सा हाथी बंधा हुआ है। क्या हम 24 घंटे अपने ही मान, अपने ही अकड़ और अपने ही सही होने की जिद को पाल रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर भीतरी शांति और परमात्मा की शिकायत करना व्यर्थ है। आज कोशिश कीजिए इस मान यानी अहंकार के हाथी की पकड़ को ढीला करने की। विनम्र बनिए, झुकना सीखिए और अपने भीतर के इस संकीर्ण मैं को विलीन होने दीजिए। जैसे ही अहंकार का यह मतवाला हाथी हटेगा, आपके भीतर उस पीयू का, उस अनंत प्रेम और आनंद का शंखनाद अपने आप गूंज उठेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अरे वो अति तेज व्यव मंत्र संगे पूजी रहना तू, कितला देव धर्म अन गंधच आखो, समय डेलशे त्या भेव तू, अंतकरण मा गैरा खोल मजार, मनना पारा ठिशिनी, भेव मराले नको असं तुलेच वाटस, भेव खतम व्हायला नको असं तुलेच वाटस। अरे भेव म्हणजे तुना जीव, भेव म्हणजे तुनी ताखात, भेव म्हणजे तुना आत्मा, आणि भेव म्हणजे तुन बठ्ठ काही असं तुले वाटस। म्हणशीन तू भेवले आ मयस को मयस, तू भेवना लाड करस, तू भेवना मक्कुलेस, आणि भेवले डोखावरे लिसनी नाचस मोक्या चोक्या। अरे तुले आते लाज सरंबी वाटस, नाही भेवनी बेव म्हणजे तू ना पाचिलेच पुंजलशे, ह्या बेवना पायरे तू गुलाम विदायलशे, ह्या बेवना पायरेच तुनी हुशारी निरा नाम खतम विगी, या बेवना पायरेच तुना हुशारी मातून शानपण जलमलेत नाही, या बेवना पायरेच तुना विचार खतम विदायलशेत, तरी बी तू म्हणराय ना बेव म्हणजे तुला जित्तापण ना सारा, बेव नाही राहावं ते तू वशी बिन सारा, अरे भेव तू असं समाई ठेवशे ना जसा त्यातून वाढ वडीलच शेतस, अनमोर येणारा टाईम मातला वारसदार बी, अरे वाढ वडलंस न्या तठायल परथा, तू पोसाडी राहणा देवना दाखाले आणि माती राहणा तुना जिंदगी मा भरमना तमासा, मानशे मानशेस मातील गंध्या परथा संगट तू पलघडी जताडत जताडस आपला वारसदारसले, आई भ्यमकाडानी परथा त्यासना गयामा टाकी, समाई ठेवा भेव जीव मा जीव रावस्तोर असं वचन देस त्यासना कडतून, तुन्या या तठायल भेव परथास माई अजून बी मोकी जाईनी गरे गरेस मातली बाई, अरे बनाई ठेवतील तू माणूसना पायनी दाशी पल्लू गुंगटा बोरखा या मा कैत करी शिनी कैत करी ठेवतील घरमान, आणि जनावरेस ना माईक लांब आडत घ्या पैदास करतच घ्या तिनावर बैजबरी आंगणी आणि मन्नी बी भाव भाव नसना वत राहिला पाला पाचोया देवपरताना त्या भेवना फैलाव बाईपन्ना नाव मा मचाडी शीन तू उद्धरना नवरा म्हणजे देव आणि करी टाक बायकोले गुलाम, तिले दिमाग अशी संधी तिले विचार करानी अवखात अशी संधी तू झुलूम करीत घ्या तिवर त्यास वक्ते बाई माणूसना फरक वरे ठप्पा मारत घ्या तू येडा बनत घ्या बट्ठा गोष्टीस मा तुन्या भ्याकड भरमेसले खरं मानत घ्या आणि खरानी अख्ख्या बेचूट सुकना गुंता भरमना मायक बनाडी म्हणशी खराना शोध लेवा गुंता गंजाज माणशेसना टोय भरमना मागे पयत घ्यात खरा कोटाना गुतागुतमा, अरे भो चांगला चांगला विचार थई चांगला रस्ताले जावान चांगला वांगलानं ज्ञान तुले समजलं नाही, अरे म्हणशीन फरकेसनी जमा पुंजी वाढतच गी न येडान मायक, आन जथा बन तथा आई महामारीना रोग पसरत घ्या हलका भारी माणशेसमा हाऊ बामन हाऊ क्षत्री हाऊ वान्या अहू खाल्ली जात ना तो बाटेल, अरे असा फरक जो जो तू चालत घ्या आणि फरकेसना रोग पसरत घ्या, अहू बोर्रा अहू काया अहू लांबा अहू खुनबट्या अहू नकटा अहू चपटा अहू या परदेसना अहू त्या परदेसना अहू या धर्मना अहू त्या धर्मना अहू या पंथना अहू त्या कुईना, बाई माणूस कितला फरक कितला फरक, अरे फरक फरक फरक धाकला मोठा ना फरक फरक मजार फरक, त्यामाई बी बारीक सुरीक फरक फरकच बोकाय ना आणि त्यांना संसार, अरे भो तूच करत राहिला।
2: गीताई अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन म्हणाला करुणी करुणा माझी बोलिलास रहस्य जे त्या थोर आत्मविद्येने माझा हा मोह फेडिला, उत्पत्ती नाश भूतांचे ऐकिले मी सविस्तर कळला तुझ पासूनी अभंग महिमा तुझा, तुझे ते ईश्वरी रूप मानितो सांगसी जसे तेची मी इच्छितो पाहू प्रत्यक्ष पुरुषोत्तमा, तू जरी माणिसी शक्य मजते रूप पाहणे तरी योगेश्वरा देवा दाखवी तेची शाश्वत। श्री भगवान म्हणाले पहा दिव्य तशी माझी रूपे शत सहस्त्र तू नाना प्रकार आकार वर्ण जात विचित्रची, वसु वायु पहा रुद्र तसे आदित्य अश्विनी पहा अनेक आश्चर्ये कधी कोणी न पाहिली, इथे आज पहा सारे विश्व तू सचराचर माझ्या देहांत एकत्र इच्छा दर्शन हे तुझ परी तू चर्म चक्षुने पाहून शकसी मज घे दिव्य दृष्टी ही माझा ईश्वरी योग तू पहा। संजय म्हणाला महायोगेश्वरी कृष्णे राया बोलू निहा परी दाविले तेथ पार्थास थोरले रूप ईश्वरी बहु डोळे मुखे ज्ञात दर्शने बहु अद्भुत बहु दिव्य अलंकार सज्ज दिव्यायुधे बहु दिव्य वस्त्रे फुले गंध लेवुनी सर्वतोपरी आश्चर्ये भरला देव विश्वव्यापी अनंततो प्रभा सहस्र सूर्यांची नभी एक वटे जरी तरी त्या थोर देवाच्या प्रभेशी न तुळे चिती सारे जगातले भेद तेव्हा काल वले जसे देहांत देव देवाच्या देखिले तेथ अर्जुने मग विस्मित तो झाला अंगी रोमांच दाटले प्रभूस हात जोडूनी बोलिला नतमस्तक। अर्जुन म्हणाला देखे प्रभो देव तुझ्या शरीरी कोंदाटले सर्वची भूत संघ पद्मासनी ध्यान धरी विधाता ऋषी सवे खेळत दिव्य सर्प लेवुनी डोळे मुख हात पोट जिथे तिथे तूची अनंत मूर्ते विश्वेश्वरा शेवट मध्यमूळ तुझ्या न मी देखत विश्वरूपी प्रभो गदा चक्र किरीट धारी प्रकाश सर्वत्र तुझा प्रचंड डोळे न पाहू शकती अपार जातुनी हे पेटत अग्निसूर्य तू थोर ते अक्षर जानन्याचे तुझाची आधार जग जगास अंती तू राखिसी शाश्वत धर्म नित्य मी माणितो तू परमात्म तत्व किती भुजा वीर्य किती पसारा डोळे कसे उज्ज्वल चंद्र सूर्य हा पेटला अग्नि तुझा मुखात तू ताविसी सर्वची आत्मतेजे दाही दिशा विस्तृत अंतराळ व्यापूनी तू एकची राहिलासी पाहूनी ते अद्भुत उग्र रूप तिन्ही जगे व्याकुळली उदारा हे देव सारे रिघती तुझ्यात कोणी भये प्रार्थित बद्ध हस्त मांगल्य गीते तुझ सिद्ध संत परोपरी आळविती समस्त आदित्य विश्वे वसुरुद्र साध्य कुमार दोघे पितृदेव वायू गंधर्व दैत्यांसह यक्ष सिद्ध सारे कसे विस्मित पाहताती अफाट हे रूप असंख्य डोळे मुखे भुजा उरु असंख्य पाय असंख्य